उत्तरा केकर के स्वर में ये मराठी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं संत मीराबाई की ये हिंदी भक्ति रचना अनुपमा रॉय के स्वर में।

अनुपमा रॉय के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में संत गुरु नानक जी की ये भक्ति रचना।

लता मंगेशकर के स्वर में संत गुरु नानक जी की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राग बैरागी में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं खगेश कीर्तनिया. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं रूपक मित्रा और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं देवाशीष अधिकारी.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to a khayal in the rag Bairagi. Our artist is Khagesh Kirtaniya. Accompanying our artist on the tabla is Rupak Mitra and on the harmonium is Devashish Odhikari.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बैरागी में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे खगेश कीर्तनिया। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे रूपक मित्रा और हारमोनियम प्रसाद दे रहे थे देवाशीष अधिकारी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग परमेश्वरी में सितार वादन। कलाकार हैं कौशिक बसाक। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं इंद्रनील भादुड़ी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग बैरागी। आवर आर्टिस्ट वॉज खगेश कीर्तनिया। अकंपनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द तबला वॉज रूपक मित्रा एंड ऑन द हारमोनियम वॉज Debashish Odhikari. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a sitar recital. Listen to a sitar recital in the rag Parameshwari. Our artist is Kaushik Boshak. Accompanying our artist on the tabla is Indranil Bhaduri.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग परमेश्वरी में सितार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे कौशिक बसाक। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे इंद्रनील भादुड़ी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Parameshwari. Our artist was Kaushik Boshak. Accompanying our artist on the tabla was Indranil Bhaduri. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं अरविंद कुमार आजाद का तबला वादन, ताल तीन ताल। साथ संगत है हारमोनियम पर देश पांडे।

बनारस घराने में बांट बजाने का अपना प्रचलन है, तो हम आपको जाति की विशेषता से बांट सुनाएंगे। अलग अलग जातियों का उसमें कैसा समन्वय है।

ಕಟ ದಿನ್ನ ಕಟ ದಿನ್ನ ಕಟ ಧಾನ ಕಟ ಘನ ಧಾ ಧಗನ ಧಾ ಧಗನ ಧಗ ಧರ ಧರ

अभी आपने अरविंद कुमार आजाद का तबला वादन सुना। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं विकास पुरंदरे का तबला वादन, ताल तीन ताल। साथ संगत है हारमोनियम पर उमेश पुरोहित।

अभी अपने विकास पुरंदरे का तबला वादन सुना, साथ संगत की थी हारमोनियम पर उमेश पुरोहित ने। रागम 24/7 डीटीएच चैनल के लिए ये आकाशवाणी पुणे की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 डीटीएच चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है नीता माथुर का गाया राग बिहाग. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं कैसे सुख सोवे, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं आली री अलबेली सुंदर नार. तबले पर आपकी संगति की है पंडित केदारनाथ ने, और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ वोकल रेंडिशन इन राग बिहाग बाय नीता माथुर. द विलंबित ख्याल इज सेट टू एक ताल. द वर्ड्स आर कैसे सुख सोवे एंड द्रुत ख्याल इज सेट टू तीन ताल. द वर्ड्स आर आलीरी अलबेली सुंदर नार कंपनीड बाय पंडित केदारनाथ ऑन द तबला एंड ऑन सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी.

0: अभी आप नीता माथुर का गाया राग बिहाग सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए राग जोग। मध्य लय ख्याल रूपक ताल में निबद्ध है, बोल हैं हो बलमा, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं साजन मोरे घर आए। तबले पर आपकी संगति की है पंडित केदारनाथ ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल जनरेशन इन राग बिहाग बाय नीता माथुर। नाउ वी प्रेजेंट राग जोग। द मध्य लय ख्याल इज सेट टू रूपक ताल, द वर्ड्स आर हो बलमा एंड द्रुत ख्याल इज सेट टू तीन ताल, द वर्ड्स आर साजन मोरे घर आए, accompanied by Pandit Kedarnath on tabla and on sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami.

0: अभी आप नीता माथुर का गाया राग जोग सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए राग देश। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं झूलत सांवरे संग गोरी। तबले पर आपकी संगति की है पंडित केदारनाथ ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल जनरेशन इन राग जोग, नाउ लिसन टू राग देश। मध्य लय ख्याल इज सेट टू तीन ताल, द वर्ड्स आर झूलत सांवरे संगोरी, accompanied by पंडित केदारनाथ ऑन तबला एंड ऑन सारंगी by पंडित भारत भूषण गोस्वामी।

0: अभी आप नीता माथुर का गाया राग देश सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी पंडित केदारनाथ ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन बाय नीता माथुर अकंपनीड बाय पंडित केदारनाथ ऑन तबला एंड ऑन सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

我那个表表，我那个表表。

的干我那点的汤有家里说满意

哎，

真的还啊你哎真的怎么讲怎么讲

ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਓ ਲੈਂਡ ਗਿਆ ਚੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਲੈਂਡ ਗਿਆ ਨਾਏ।

다리

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन। प्रारंभ में सुनते हैं विदुषी लक्ष्मीबाई जाधव द्वारा प्रस्तुत राग बहार। विलंबित तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है सब बहार आए, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है बसंत की धूम मची। सात संगत सारंगी ए.के. कुंटे, तबला डी.के. जोशी। तो आइए सुनते हैं राग बहार, कलाकार विदुषी लक्ष्मीबाई जाधव।

श्रोताओं, अभी आपने सुना विदुषी लक्ष्मीबाई जाधव द्वारा प्रस्तुत राग बहार। आपके साथ सारंगी पर संगति कर रहे थे ए के कुंटे और तबले पर संगति कर रहे थे डी के जोशी। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं सरदारीबाई कारदगेकर द्वारा प्रस्तुत राग पुरिया। विलंबित त्रिताल में निबद्ध रचना के बोल हैं आज पलन आए।

सरदारीबाई कारदगेकर द्वारा प्रस्तुत राग पुरिया आप सुन रहे थे। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं विदुषी गंगूबाई हंगल द्वारा प्रस्तुत राग अडाणा। विलंबित तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है जो तेरी रजा जो चाहे। साथ संगत हारमोनियम अप्पा जलगांवकर, तबला शेषगिरी हंगल। तो आइए सुनते हैं विदुषी गंगूबाई हंगल द्वारा प्रस्तुत राग अडाणा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना विदुषी गंगूबाई हंगल द्वारा प्रस्तुत राग अडाणा। आपके साथ हारमोनियम पर संगति कर रहे थे अप्पा जलगांवकर, तबले पर थे शेषगिरी हंगल। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग चांदनी केदार में सितार वादन. आज के कलाकार हैं पंडित बुधादित्य मुखोपाध्याय. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित अनिंद चट्टोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग We present a Hindustani instrumental recital. Listen to a sitar recital in Rag Chandni Kedar. Our artist tonight is Pandit Budhaditya Mukhopadhyay. Accompanying him on the tabla is Pandit Anindya Chattopadhyay.

0: आशीष खान आज प्रस्तुत करेंगे राग जोग में सरोदवादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं विक्रम घोष।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल। लिसन टू अ सरोद रिसाइटल इन द राग जोग। अवर आर्टिस्ट टुनाइट उस्ताद आशीष खान। द अकंपनिंग आर्टिस्ट इज विक्रम घोष ऑन द तबला।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे राग जोग में सरोद वादन। आज के हमारे कलाकार थे उस्ताद आशीष खान। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे विक्रम घोष। यह कार्यक्रम आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की प्रस्तुति थी। रागम 24

0: घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल इन द राग जोग। आवर आर्टिस्ट वॉज उस्ताद आशीष खां। अकंपनिंग द आर्टिस्ट वॉज बिक्रम घोष ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर द रागम चैनल। एनी टाइम इंडियन म्यूजिक 24/7।

अपनी गायन की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती लता देवले जी से प्राप्त की। आगे चलकर उन्होंने ग्वालियर घराने के श्री रघुनाथ वाघ जी

0: से विशेष रूप से टप्पा गायन सीखा और पद्मश्री पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी से गुरु शिष्य परंपरा के तहत ख्याल, ठुमरी, नाट्य संगीत और भजनों की गहन शिक्षा ग्रहण की।
1: Born into a musical family, Shri Devle received his initial training in vocal music from his mother, the late Shrimati Lata Devle. Later, he specialized in tappa singing under the guidance of Shri Raghunath Vag of the Gwalior Gharana. Furthermore, under the traditional Guru Shishya Parampara, he received intensive training in khayal, dhumri, natya sangeet and bhajans from the Padma Shri recipient Pandit Jitendra Abhisheki.
0: तानसेन, कालिदास, सवाई गंधर्व जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समारोह के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और खाड़ी देशों में अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देवले जी आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार हैं। साथ ही आप संगीत शिरोमणि और विक्रमादित्य जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत है।
1: एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन श्री देवले हैज डिलीवर्ड Outstanding performances at prestigious national festivals such as the Tansen, Kalidas and Savai Gandharva Festival, as well as in the USA, UK and the Gulf countries. He has also been honored with several prestigious awards, including the Sangeet Shiromani and Vikramaditya Awards.
0: Sudhakar Devle ji apne karyakram ki shuruaat raag Puriya se kar rahe hain. Vilambit khayal ke bol hain, pyare degar lagi. जो एक ताल में निबद्ध है, द्रुत ख्याल के बोल हैं, चलो हटो जी छेल, काहे रोके गेल, जो त्रिताल में है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: श्री सुधाकर देवली इज कमेंसिंग हिज परफॉर्मेंस विद राग पुरिया। द कंपोजिशन इज सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स प्यारे देगर लागी। द कंपोजिशन इज सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स चलो हटो जी छैल काहे रोके गैल। Accompanying him on the harmonium is Pramod Borgaonkar and on the tabla is Ulhas Rajhans.

0: राग पुरिया में अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय गायन। देवले जी प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बसंती केदार। इस रचना के बोल हैं बरनिन जाए सखी जो झपताल में निबद्ध है। द्रुत रचना के बोल हैं बेरी बसंत अब आयोरी जो त्रिताल में है।
1: That was a classical vocal performance by Shri Sudhakar Devle in Raag Puriya. Shri Devle will now present Raag Basanti Kedar, set to Jhaptal with the lyrics Barnin Jai Sakhi, set to Trital with the lyrics Meri Basant Ab Ayori.

0: अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का गायन राग बसंती केदार। सुधाकर देवले जी कार्यक्रम का समापन राग हंस ध्वनि में तराना से कर रहे हैं। त्रिताल में निबद्ध रचना की बोल है दारा दीम तदारी दानी दीम।
1: You are just listening to the vocal performance of Shri Sudhakar Devle ji in Raag Basanti Kedar. Shri Sudhakar Devle is concluding his program with Tarana in Raag Hans Dhwani, set to Trital with the lyrics Dara Dim Tadare Dani Dim.

0: अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का गाया राग हंस ध्वनि में तराना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा संपन्न होती है।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू अ तराना इन राग हंस ध्वनि रेंडर्ड बाय श्री सुधाकर देवले। Accompanying him were Pramod Borgaonkar on the harmonium and Ulhas Rajhans on the tabla. This program was a presentation of Akashwani Indore. With this, today's Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha comes to an end.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब प्रस्तुत है समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से

अब आप सुनेंगे सरदार खां का सारंगी पर बजाया राग गांधारी, तबले पर संगत की है हफीज खां ने। नाउ लिसन टू द राग गांधारी बाय सरदार खां ऑन द सारंगी। तबला अकॉम्पैनिमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय हफीज खां।

आप सुन रहे हैं सारंगी वादन, कलाकार हैं सरदार खां। यू आर लिस्निंग टू हिंदुस्तानी सारंगी रिसाइटल बाय सरदार खां। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे दादरा धुन। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स अ दादरा धुन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी सारंगी वादन। कलाकार थे सरदार खां। संगत कलाकार थे तबले पर रामस्वरूप रतौनिया। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सारंगी रिसाइटल बाय सरदार खां। द अकॉम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत. आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत गिटार वादन. कलाकार हैं दीपांकर राय चौधरी. इस कार्यक्रम में पहले सुनते हैं राग नट भैरव. तबले पर संगत की है भरत कुमार मिश्र ने.

अभी आप सुन रहे थे दीपांकर राय चौधरी का गिटार पर बजाया राग नट भैरव। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया गिटार पर राग कीरवानी। तबले पर संगत की है भरत कुमार मिश्र ने।

अभी आप सुन रहे थे दीपांकर राय चौधरी की गिटार पर बजाई राग मिश्र पहाड़ी धुन। तबले पर संगत की थी भरत कुमार मिश्र ने। ये कार्यक्रम रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत के अंतर्गत आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सहयोग से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित एल के पंडित का गाया राग विभास. विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है. बोल हैं मोहन जागो और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं आज मोरे घर आए. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर अमीर खान ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal recital by Pandit L.K. Pandit. He begins his recital with a performance in Rag Vibhas. The Vilambit Khayal is set to Tilwada Tal. The words are Mohan Jagu. The Drut Khayal is set to Teen Tal and the words are Aaj Mure Ghar Aaye. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the sarangi by Amir Khan.

0: अभी आप पंडित एल के पंडित का गाया राग विभास सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर अमीर खान ने। और लीजिए अब सुनिए इनका गाया राग शुद्ध सारंग। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं नाम निरंजन, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं तू है निराकार। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर अमीर खान ने।
1: You just heard Raag Vibhas performed by Pandit L.K. Pandit. He was accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the sarangi by Amir Khan. He now presents a rendition in Raag Shuddh Sarang. The Vilambit Khayal is set to Ek Taal and the words are Naam Niranjan. The Drut Khayal is set to Teen Taal. The words are Tu Hai Nirakar.

0: अभी आप पंडित एल के पंडित का गाया राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर अमीर खान ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: That was पंडित एल के पंडित परफॉर्मिंग राग शुद्ध सारंग। He was accompanied on the tabla by विनोद पाठक and on the sarangi by अमीर खान। This program was presented by All India Radio, Delhi।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का DTH चैनल रागम. आइए सुने भक्ति संगीत. हर रूप में छिपे हैं. आइए अब सुने RP शुक्ला की रचना विवेक प्रकाश की आवाज में.